दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। No, really, I mean it. और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

अधूरे साथिया साथिया जान भी दे तू तुझे तेरे लिए जीना मुझे ओ प्रिया तन्हा अकेले कहीं मैं ना तुझे जाने दूंगा प्रियतमा प्रियतमा बस मैं निभाऊंगा मैं

0: शुभ दुपार आरजे प्रगतीताई नमस्कार. रेडिओ तीर्णा ऐकणाऱ्या सर्व मित्रांना नमस्कार आणि राम राम. तर आज कार्यक्रम खूप छान चाललेला आहे आणि आज वाढदिवस आहे अभिनेत्री काजोल आणि अभिनेत्री जेनिलिया या दोन्ही अभिनेत्रीचा वाढदिवस आहे. त्यांच्या वाढदिवसाला त्यांना खूप खूप शुभेच्छा. त्यानंतर आमचे परमप्रिय मित्र सचिन झेंडगे यांची मुलगी शिवानी हिचाही वाढदिवस आहे. तिला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि मित्रांनी जे गाणे आज पाठवत आहेत ते गाणे खूप छान चालले आहेत, ऐकायला आनंद होत आहे. नमस्कार, मी अनंत कुलकर्णी दौंड या ठिकाणाहून.
1: मैं नायकवाडे नगर तालुका मोहोर जिला सोलापुर से सैफन शेख बोल रहा हूँ. प्रगति मैडम 15 दिन के बाद आज वॉइस भेज रहा हूँ, कृपया इसे जल्द से जल्द शामिल कर लीजिए, ये पहले रिक्वेस्ट है आपसे. आज का व्हाट्सएप पर मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, कुछ काजोल के गाने उनके बर्थडे के मौके पर आप ले रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है. काजोल को बर्थडे के हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं. और आज के इस कार्यक्रम में जो गाना सुनना है उससे पहले मुझे ये कहना है कि जानी दुश्मन फिल्म के गाने बहुत अच्छे लगे, एक चित्रपट एक गुंजन में. और आपका भी बिग स्टार बहुत अच्छा लगा जो उदित नारायण पर आपने किया, कुल मिलाकर बहुत बढ़िया रहे जितने भी शो पेश हुए पेटे सर के आपके. आज के प्रोग्राम में मुझे गाना सुनना है बेवफा सनम फिल्म का एक गाना जो नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल का गाया हुआ, योगेश कलिक और निखिल विनय का संगीत.

0: तुम उतना याद आए। इस फिल्म के गाने चाहे जितनी बार भी सुने जाए बस ऐसा लगता है कि सुनते ही रहे, इतने बढ़िया गाने बनाए हैं बेवफा सनम फिल्म के। तो इस गाने को सुनने के लिए मेरे दोस्त कबीर मस्के, मोहम्मद अख्तार, आजम, सरफराज इरम, अलीना, भाभी फरजाना, वाइफ सूफिया, इन सब के साथ अमोल कांबड़े और सचिन जी है, इन सब के साथ मुझे ये गाना सुनना है।
1: थँक यू सो मच अनंत कुलकर्णी सर, आणि थँक्यू सो मच सैफान शेख सर, बऱ्याच दिवसानंतर त्यांचा व्हॉइस, खरं तर ते गाणं त्यांच्याच आवाजात मला ऐकावं असं वाटत होतं, इतकं छान त्यांनी फक्त दोनच ओळी गायला। नेक्स्ट टाइम एक कडवं गात चला असं कुबेर सर सैफान शेख सरांना सांगा की एक कडवं म्हणत चला, कारण की त्यांचा तेवढा गोड आवाज एकदाच ऐकायला भेटतो आम्हाला। तर ऐकूया सैफान शेख सरांची बेवफा सनम या चित्रपटातील सुंदर अशी व्हॉट्सअप फरमाईश।

0: तुम ऐसी कोई भी लड़की नहीं हो, कैसे एक्सप्लेन करूं कि तुम स्पेशल हो?
1: ये भी मैं बताऊं, मैं कैसी स्पेशल हूँ ये मुझे बताना है? तो तुम क्या करोगे? रोल क्या है तुम्हारा?

0: आकर देख ले नजदीक जाकर।
1: अरे तेरी भूला आकर जाकर पीकर लेकर आकर जाकर पीकर लेकर आकर जाकर पीकर लेकर पीकर लेकर पीकर लेकर पीकर लेकर आकर जाकर है।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।